वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो नित्य नित्य।